0: ये है
1: लाइका रेडियो नन ईटन गेट रेडी पेपेज पेरी पेरी इज फायरिंग अप समथिंग बिग आवर स्टोर इज नाउ ओपन फ्रॉम फ्लेम ग्रिल्ड चिकन टू माउथ वाटरिंग रैप्स इट्स बोल्ड इट्स स्पाइसी इट्स प्योर पेपेज विजिट अस एट 126 एबी स्ट्रीट सीवी 11 5BZ पेपेज पेरी पेरी पेपेलिशियस कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
2: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
3: The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood.

0: Biker Radio. साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410.
1: Apple Travel, auto protected.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
3: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए स

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख

नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा। ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।

0: Radio Midlands.
1: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
0: Or sales at leicamedia.co.uk.
2: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
3: Well, she's talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
2: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
6: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
10: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
11: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
10: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
11: दिल तो टूट पे किया.
10: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
12: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
10: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियां हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
2: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
3: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
4: जगदात्री,
3: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
4: माला ले आना, लाया जी।
3: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
5: टीम, get ready for the action।
3: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
6: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। लाइका रेडियो नेटवर्क broadcasting across the UK with Asian stations. Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: पंडित रविशंकर शर्मा के म्यूजिक पर आशा भोसले की आवाज में था ये गाना फिल्म वक्त से, और उससे पहले महबूब की मेहंदी। इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई, लता जी और रफी साहब की आवाज में ये सदाबहार गाना। और लीजिए, इन दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपका साथ देने के लिए अब से लेकर एक बजे तक। वैसे इस बार हमारा साथ काफी लंबा चला, पिछले दो हफ्तों से मैं आपके साथ हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है, और आपको भी अच्छा लग रहा है मेरा साथ ये जानकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो आज भी साथ दीजिए, क्योंकि उसके बाद अब हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। तो इस हफ्ते को साथ मिलकर खूब मजे के साथ बिताएंगे, इन तीन घंटों को मजे के साथ मिलकर बिताएंगे, और इस चिंता को भूल जाइए कि कल ऑफिस जाना है या कल काम पर जाना है। संडे का दिन है, मौसम भी मेहरबान है, तो बस रिलैक्स होकर आराम से मजे के साथ, चाहे तो चाय ले लीजिए, सवे सवेरा है, चाय पी सकते हैं, और अगर चाय पी चुके हैं तो नाश्ते की प्लेट ले लीजिए, लेकिन रेडियो को ऑन ही रखिए, एक बजे तक मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. लेकिन terms and conditions भी apply होंगे.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज ब्राजील और नॉर्वे के बीच में मैच होने जा रहा है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपने 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.

0: केसी बुकारिया की फिल्म अमिताभ बच्चन और जया वर्धा ने जिसमें काम किया था, फिल्म का नाम आज का अर्जुन आपने सुनी। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो और आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। संडे का दिन है, आप सब आराम से बैठे हैं और आप सब ने अपने रेडियो सेट्स को भी ऑन किया हुआ है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a radio. बिल्कुल, ये आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन ही है और जहाँ पर ऋतु शर्मा आपके साथ है और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं, तो चलिए एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। हमारे अनिल सोनी जी ने वियाना से मैसेज भिजवाया है, कहते हैं ऋतु हमारा तो रेडियो भी ऑन है और संडे भी ऑन है, क्या बात है, बस ऑन ही रखिए क्योंकि कल से तो फिर सब काम के झंझट में फंस जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे, हर हफ्ते यही होता है, मंडे टू फ्राइडे देन वीकेंड, मंडे टू फ्राइडे देन वीकेंड, और पता ही नहीं चलता महीना कब निकल जाता है। और महीने तो क्या, सालें कब निकल जाती हैं, कितने साल यूं ही निकल जाते हैं, निकल चुके हैं जीवन के। एनीवेज एंजॉय कीजिए। और गुरुदेव गांजा आपने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, आप हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं चेहरे पे खुशी आ जाती है जब लाइका रेडियो सुनता हूँ, क्या बात है। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात लिख दी, दिल खुश कर दिया। स्वागत है आपका इस शो में। मानू जी आपका भी स्वागत है, विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गुनोवा जी कहते हैं कि दो हफ्ते आपके साथ बहुत अच्छे बीते, सो सेम टू सेम मैं भी यही कहूंगी, थैंक यू। एंड मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, कहते हैं ऋतु आप जानती है हमारी जो मुंबई के मेयर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऋतु तावड़े। तो बस आपको तो मेरी याद आई जाती होगी जब भी आप मेयर का नाम सुनते होंगे। अब मैं क्या करूं, ये ऋतु नाम इतना प्यारा है कि इतने सारे लोगों का है कि गूगल पे एक ऋतु लिखो तो लाखों आ जाते हैं। और आप भी सोचिए, आपके घर परिवार में एक ना एक ऋतु जरूर होगी, हर किसी के घर में होगी, या लंदन में इतनी सारी है। और कभी कभी मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि क्या मम्मी आपने मेरा नाम इतना कॉमन रख दिया, हर किसी का नाम है। तो मेरी मम्मी कहती है नाम मैंने वही रखा था जो सुंदर है, अच्छा है, अब सबको अच्छा लगता है तो क्या किया जाए। अब नाम बहुत प्यारा है, अब मैं क्या करूं, इतना प्यारा नाम है सब रख लेते हैं। एनीवेज थैंक यू मोहम्मद जी हमारा साथ देने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ अर्जुन जी हैं, शेखर जी हैं, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा थैंक यू अमिता जी, मृदु जी, हिमांशु पटेल, तोची जी, हरिश्रुदा एंड ऑफकोर्स हमारी मालती जी। और अब बाकी के नाम लूंगी लेकिन पहले एक गाना हो जाए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लग जा गले दिल जुबा।
1: रफी साहब की आवाज में एक बार फिर से पंडित रवि शंकर शर्मा का म्यूजिक, और ये थी फिल्म संजय खान और बबीता की। और ये फिल्म आई थी 1966 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, और अब 60s का दौर शुरू ही हुआ है, तो चलिए 60s का एक और गाना आपको सुनवाते हैं।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: लेकिन उससे पहले एक नजर आपके मैसेजेस पर और डाल ली जाए। मालती जी कहती हैं कि रितु आपके साथ मुझे हमेशा ही मजा आता है, सो थैंक यू, ये आपका प्यार है। और प्रज्ञा कहती है रितु मैं आई आई आई आई, तो मैं आपके लिए यही कहूंगी आ जाओ। थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू ज्योति मेहता जी, भरत गंगा राम जी, सहर जी एंड ऑफकोर्स हमारे नरेंद्र भागिया जी, आपने भी आज 4 लाइनें लिखी हैं और अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है आपने? लिखा है कि दिल की लबों पे एक, दिल के लबों पे एक दुआ रहती है, हर घड़ी मुझे आपकी परवाह रहती है, रब हर सुख जिंदगी का अदा करे आपको, हर दुआ में मेरी यही इल्तजा रहती है। हाय क्या बात लिखी है, थैंक यू थैंक यू। और ये मैसेजेस सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हैं। साथ ही साथ वंदना गुट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अवार्ड मिला है और आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये क्या करती हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, उनको रिसाइकिल करके बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाती हैं, और आपने मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं और उसके लिए आपको अवार्ड मिला है। व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब यू आर डूइंग वंदना जी, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत करती हैं। कभी मिलूंगी तो आपका ये कलेक्शन जरूर देखूंगी। सो थैंक यू हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। एंड राजीव पटेल जी, विनोद जी, हैना, मानू जी, बेल्जियम वाली प्रीति जी, रोशनी जी कहती हैं आपका नाम शॉर्ट एंड स्वीट। हाय रोशनी, थैंक यू, आई लव योर नेम।
3: ये है Lyca Radio, across the Lyca Radio network, this is Ritu Sharma।

0: और शादी के म्यूजिक पर लता जी की आवाज। मेरे महबूब फिल्म से था ये गाना जिसे आप सबने बेहद पसंद किया है। थैंक यू अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जासू जी, फरीता जी आपके मैसेज के लिए कहती हैं आई एम प्राउड ऑफ माई नेम लाइक यू। बिल्कुल, नाम पर तो प्राउड होना ही चाहिए, आपको अपने माँ बाप ने दिया है और इसमें क्या बात है, नाम तो सारे ही अच्छे होते हैं। एंड थैंक यू शरफून, कहती हैं पूरा खानदान मेरे घर आ जा रहा है तो मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी पड़ रही है, तो फिर तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गीतों की जरूरत है। शरफून आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाऊंगी ताकि आप थकान फील ना हो और आप बोर ना हो और आपका खाना स्वादिष्ट जल्दी से बन जाए। थैंक यू मिस्टर शेख, थैंक यू मितुल पटेल, संध्या भाव सर, आनंद तोमर जी, रजिंदर राज जी, थैंक यू गिरीश जी, भारत में सुन रहे हैं, कहते हैं अब तो आप अगले हफ्ते आएंगी तो आज संडे तो मुझे आपको सुनना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सुनना पड़ेगा, आप मुझे मिस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पूरा हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू, थैंक यू सभी का धन्यवाद। और सुनवाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई जा सकते हैं। साउथ होल ट्रेवल को कॉल कीजिए ऑन 02080 5784 पर, ये टोल प्रोटेक्टेड है और उनके पास बहुत अच्छी दुबई की डील्स भी हैं, तो जल्दी उनसे कांटेक्ट कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
2: Leica Radio. Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
4: फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
8: Four beers, please, garçon!
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
9: Lester Miller is back.
10: And the stage is about to explode. Confirmed artist. Shindy.

0: यह गाना लिखा है साहिर लुधियानवी ने, एक एक शब्दों को चुन चुन कर पिरोया है इस गाने में, और उस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बिठाई है। एक कमाल का कॉम्बिनेशन है और मेरा बहुत ही फेवरेट वाला गाना है। और इसके साथ साथ ढेरो मैसेजेस आए हैं। अमिता जी कहती हैं, मुझे बैक टू बैक दोनों गाने बेहद पसंद आए, चलिए मैंने आपके नाम पर किए। जासू जी का कहना है कि मेरा फेवरेट गाना है मुझे दीजिए, बिल्कुल मैंने आपको दिया। वासंती जी एडमिंटन में हमारे साथ, संध्या भावसर थैंक यू आपके मैसेज के लिए, एंड थैंक यू साकू जी। साकू जोशी का मैसेज आया, कहती है क्या बात है ऋतु, जब भी आते हो बाहर ही बाहर आ जाती है, आहा, और आपका दिल खुश हो जाता है, और आपका ये मैसेज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। थैंक यू साकू जी। और इसके अलावा हमारे साथ हरीश रुदा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड समीमा का मैसेज, समीना का मैसेज है या समीमा, मैनचेस्टर में हमें सुन रही है, कहती है यहाँ तो मौसम थोड़ा क्लाउडी है और ठंडा भी है। हाँ आज मैनचेस्टर में 21 डिग्रीज तक टेम्परेचर है, लेकिन अच्छा है, गर्मी से राहत है। देखिए पता नहीं अगले हफ्ते फिर कब चमकता हुआ सूरज आसमान में बैठ जाए नाराज होकर और गर्मी बरसा दे। एंजॉय कीजिए इस मौसम को। एंड सुनीता, आप कल कॉन्सर्ट में गई थी, आपने बहुत ही मजे का टाइम बिताया और अब आपको एनर्जी भी चाहिए, थक गई है, तो बस एनर्जी के लिए मैं अच्छे गाने बजा रही हूँ, आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं और आप इंजॉय कर रही हैं, सो थैंक यू। और अब समय हो जाता है थ्री वर्ड्स गेम वाले गीतों के सिलसिले को शुरू करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी जोड़ी 90s की जोड़ी है, तो आज शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है जो 90s की है, क्योंकि उन्होंने 2000 के भी कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके गाने हम नहीं बजा सकते, लेकिन जो 90s की फिल्में हैं उनके दो गाने बहुत ही प्यारे मैंने सेलेक्ट किए हैं, बजाती हूँ, यानी कि जोड़ी नंबर वन का सिलसिला शुरू करती हूँ बस अब से थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो लीजिए मैंने SBI में आपको करेंसी अपडेट बता दिया, लेकिन SBI का रेट्स भी बता दूं, आज 1 पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: Like a radio.
2: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: तो आज ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच में मैच होगा, और हम आपको याद दिलाएंगे एक बार फिर से कि आप हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं रैकलो, उनसे 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410. साफ Travel at all protected.
3: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
6: In Dubai.
0: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold. It's spicy. It's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
9: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: राकेश रोशन की फिल्म जिसमें उनके भाई राजेश रोशन का म्यूजिक था, हीरोइन माधुरी दीक्षित, हीरो शाहरुख खान, और यही है हमारे आज के जोड़ी नंबर वन। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि राकेश रोशन इस फिल्म में एज ए हीरो सनी देओल को लेना चाह रहे थे, लेकिन सनी देओल को लगा कि उन्हें इस फिल्म में काम करने के पैसे जरा कम मिल रहे हैं, और वो राकेश रोशन को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि राकेश रोशन एक बड़े ही अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने राकेश रोशन से मना नहीं किया बल्कि उन्हें अवॉइड करने लगे। और जब राकेश रोशन को लगा कि सनी देओल तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो उन्होंने सनी देओल को इस फिल्म से हटाया और शाहरुख खान की एंट्री हुई। शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा, और देखिए कितना खूबसूरत कहा। और ये जो गाना आप सुन रहे थे ना, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, इस गाने में शाहरुख खान ने बढ़िया डांस किया है, लेकिन इस गाने में शाहरुख खान के पैर में चोट आ गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, और उसने राकेश रोशन से रिक्वेस्ट की कि आप इस गाने में जहाँ पर उनको चोट आई है वहाँ पर एक फ्लैश अलर्ट कर दे उस सीन पर ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि इस जगह पर शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, जैसे कि कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन की चोट को दिखाया गया था। लेकिन राकेश रोशन ने उनकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना और ऐसा नहीं किया, तो ऑब्वियसली शाहरुख खान को थोड़ा तो बुरा लगा होगा, लेकिन क्या किया जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो ऐसा हुआ था इस गाने के साथ। लेकिन ये फिल्म शाहरुख खान के लिए सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और सनी देओल ने बाद में ज़रूर सोचा होगा कि यार थोड़े पैसे कम मिल रहे थे पर फिल्म कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो हीरोइंस के साथ हुआ है कि उन्होंने फिल्म छोड़ी और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अब सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: फिल्म थी अंजाम। आप सुन रहे हैं हमारी जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी नंबर वन का आखिरी गाना जो थे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान। और आपको बताएं कि ये जो फिल्म थी अंजाम, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई हीरो ही नहीं था, मेन हीरो विलन था और थी हीरोइन माधुरी दीक्षित। क्योंकि इसमें हीरो के रूप में दीपक तिजोरी को लिया गया था, और जब उन्हें फिल्म में लिया था तो बताया था कि तुम हीरो होगे और तुम्हारा बहुत सारा रोल होगा, लेकिन उनका रोल बहुत ही कम था। सारी फिल्म में शाहरुख खान ही छाए हुए थे। और फिल्म लोगों को पसंद आई थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तो फेवरेट फिल्म्स में से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था लेकिन सेकंड हाफ में तो इतनी मार कटाई और खून खराबा था कि मुझे लग रहा था कि अगर वो हिस्सा थोड़ा कम किया जाता तो शायद फिल्म मेरे लिए और अच्छी हो पाती। एनीवेज, गाना बहुत ही सुंदर था, और ये गाना जब भी सुनती हूँ मुझे अभिजीत भट्टाचार्य की वो कॉन्सर्ट याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें लाइव हमारे सामने गीत गाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके वहाँ पर जाकर। एंड आई एम श्योर कल हरिहरन जी का कॉन्सर्ट था, मैं कल बिजी थी, मेरा दिल तो बहुत था लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन आप में से बहुत साथी गए हैं वहाँ पर। हाउसफुल शो था, सोल्ड आउट शो था, आई एम श्योर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो सिंगर तो है ही वो बहुत अच्छे, लेकिन क्या इंसान है, मतलब इतने बढ़िया, इतना सरल स्वभाव, हसमुख, मुझे इतना अच्छा लगा कि जब कोई इंसान बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और तब भी वो सरल रहता है तो वाकई में वो इंसान लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद घमंड आ जाना बहुत कॉमन होता है और बहुत लोगों में आ जाता है, लेकिन जिन लोगों में नहीं आता मुझे लगता है वो ही असली हीरो होते हैं, और हरिहरन जी कुछ वैसे ही थे। और बताएं, जब मैं उनसे मिली, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका वो गाना बहुत पसंद है, तू ही रे, तो अगर आप मेरे लिए वो एक लाइन गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट उन्होंने बिना कुछ कहे इतने प्यार से मेरे लिए वो गाना गाया, और मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया जो मैंने अपने सोशल्स पे पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। यू नो, ये जो मेमोरीज होती हैं ये लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं और मेरे साथ भी रहेंगी, और जो इम्प्रेशन हरिहरन जी का मेरे ऊपर पड़ा है ना, बस कमाल का है, मैं अब कभी भी नहीं भूलूंगी उसे। तो बहुत अच्छा टाइम था, और आप मुझे बता सकते हैं कि उनका कॉन्सर्ट कैसा रहा, आई एम श्योर सुपर डुपर हिट रहा होगा, बहुत आपने जो भी गए थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा।
1: दिस इज रितु शर्मा। Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Leica Extra Podcast Update. तो आपको याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है, और इस बार का टाइटल है राइज इन विमेंस क्रिकेट, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने। तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जरूर सुनिए, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है
2: Leica Radio. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 700

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: जी आज सोमवार नहीं, आज इतवार है, लेकिन उनको उनसे प्यार है ये तो हमने फिल्म में देखा है। और अहिर यादव जी कहते हैं कि ये गाना मेरे नाम कर दो ऋतु, बिल्कुल मैंने आपके नाम पर कर दिया। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, आंटी जी हमारा साथ दे रही हैं, राजीव पटेल जी हमारे साथ हैं, शेखर आनंद जी हैं, भारती जी हैं, संध्या भावसर हमारे साथ हैं। और एक मैसेज आया है परवीन शुक्ला जी का, कहते हैं कि वो गाना आपने बजाया था ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये गाने ने मुझे मेरे पार्टनर की याद दिला दी है जो 5 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए और सारी यादें वापस ताज़ा हो गई। आप शो को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस यही कहूँगी, क्या कहूँ कि देखिए जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रह ही जाती हैं। तो बस आपको गीत पसंद आया, चलिए गीत हमने आपके नाम पर किया, थैंक यू साथ देने के लिए। उसके अलावा हमारे साथ हैं सुमित्रा रावल, वुडफुट ब्रिज में प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सुमित्रा जी। अर्जुन जी सिंधी पकौड़े खा रहे हैं, ओहो, करती हूँ खाने पीने की बात पे तो मैं आने ही वाली हूँ क्योंकि लंच टाइम होने वाला है या फिर कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम होगा या कुछ लोग ब्रंच कर रहे होंगे, तो संडे के दिन तो अच्छा खाना पीना बनता ही है। यू नो पूरे हफ्ते ये नहीं खाना वो नहीं खाना, डाइटिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अरे हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप जी भर के मन पसंद की चीज़ें खा पाए, नहीं तो जी किस लिए रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं, है ना। तो करते हैं क्या आप संडे को चीट डे, मैं बात करती हूँ इस बारे में, पहले जरा ये बता दूं।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 127.43 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: So gold rate is 100.6 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
5: बन गया अच्छा
1: अच्छा जी,
5: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

0: लीजिए किशोरदा की आवाज में ये गाना। तेरे चेहरे में वो जादू है, और वाकई में उस जमाने में हेमा मालिनी के चेहरे में क्या जादू था। इनफैक्ट आज भी इतनी खूबसूरत और इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं हेमा जी, क्या कहने हैं उनके। धर्मात्मा फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आशा भोसले और किशोरदा की आवाजों में माई फेवरेट, गिरीश जी का फेवरेट और हमारे सारे लिसनर्स का फेवरेट ये वादा रहा फिल्म का गीत। और दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। कैसे हैं आप सब? अभी अभी जुड़े हैं, बहुत सारे गाने मिस कर दिए हैं आपने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस आवर में साथ दीजिए। इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम भी खेलते हैं और मैं आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी सुनवाती हूँ। और इस बार तो आपको एक बोनस मिलेगा, यानी कि दो की बजाय तीन ब्लैक एंड व्हाइट सुनने को मिलेंगे, बिकॉज हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम जी जो हैं तो उनका भी गीत मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम की। तैयार हैं? चलिए फिर, जो कुछ भी कर रहे हैं, ब्रंच, लंच या कुकिंग, करते रहिए और थोड़ा कानों को हमारे रेडियो सेट्स के पास रखिए ताकि तीन वर्ड्स मिस ना हो जाएं। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है कुसूर, दूसरा है जुदा और तीसरा है खफा। ये फिल्म आई थी 1966 में, आरडी बर्मन का म्यूजिक है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। कौन सा हो सकता है ये गाना, सोचिए। आई रिपीट, कुसूर, जुदा, खफा, 1966 की फिल्म, आरडी बर्मन का म्यूजिक और आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, कौन सा गाना है? अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये वन पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leica Radio. Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
6: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
7: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
6: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
7: Or sales at leicamedia.co.uk.
8: Business ke card payment charges dekh ke kabhi socha hai?
9: Yaar, main kahin zyada to nahi de raha. Pata lagane ka ek hi tarika hai. Apna latest statement TW Pays ko bhejiye aur 24 hours mein paye एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/leica या कॉल कीजिए 0203129-9840. TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
10: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
11: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
12: Okay, help's on its way.
13: Grab my hand!
14: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
16: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: नौशाद के म्यूजिक पर बैजू बावरा फिल्म से था ये गाना। और इसमें मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर की आवाजें भी शामिल थी शमशाद बेगम के साथ। अब जानते हैं शमशाद बेगम इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और ये धुन इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि मुझे ये धुन सुनकर बहुत सारे और गीत भी याद आ रहे थे। शादी ब्याह में जो गीत बजते हैं या फिर कुछ ऐसे भजन भी हैं जिनमें इस धुन को यूज किया गया है और इस गाने को सुनकर मुझे वो गाने याद आ रहे थे कि अरे ये वही धुन है जो इतनी पॉपुलर है। एनीवेज ये गाना आप सबने इंजॉय किया है। काशिफ जी कहते हैं कि ये गाना ऋतु मुझे दे दो मैंने आपके नाम किया। काशिफ जी आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और आपके जवाब मिलते जा रहे हैं। हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाले गाने को बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है और कुछ को दुविधा है, तो सोचिए सोचिए और फिल्म के साल पर जोर दीजिए। ये 1966 की फिल्म है, हाँ जी। सोचिए कौन सा है ये गाना, नहीं तो मैं तो हूँ ही सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं सुनवाने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मुकेश जी और लता जी की आवाजों में था ये गाना, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार वहीदा रहमान की फिल्म से लिया था और म्यूजिक था रवि शाह रवि पंडित रवि शंकर शर्मा जी का।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: बिल्कुल आप आपका मनपसंद रेडियो सुन रहे हैं जहाँ पर ऋतु शर्मा ही है आपके साथ और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिए हैं। तो अगला आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाने से पहले मैं जरूर उनके नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने सही सही जवाब दिया है। शालिनी जी आपका जवाब आया है सही सही, निधिश जी, अमित, नीलकंठ, नरेश पटेल, नरेन पटेल, दिव्या जी हैरो से, रजनीश, गुरशरण, फरीदा जी, मालती जी, उल्लास सहर, नीलेश तन्ना, संध्या भावसर, अयूब चौहान जी, करसन पिंडोरिया जी, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। और आज कुछ कम जवाब मिले हैं जबकि गाना बहुत पॉपुलर है और जब आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे उत्तरी की, बिल्कुल आमिर खान के स्टाइल में उत्तरी की ये गाना था, ये तो हमें पता होना चाहिए था। एनीवेज आराम से बैठ जाइए, सुनवाऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना हो जाए।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: नासिर हुसैन की फिल्म है और ओपी नैयर का म्यूजिक है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये सब करते हुए मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले कैसे लग रहे होंगे। लेकिन ओपी नैयर साहब ने अपने अक्सर के गीतों में ये सब करवाया है और उन्होंने किया भी है, सिंगर्स ने भाई, उनके गीतों की ये पहचान है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना और आप सबको पसंद आया। और बस अब थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ गाना कौन सा है। और मुझे एसएस भोगल जी एंड गिरीश जी भारत से, आपने भी सही सही जवाब दे दिया है और कुछ साथी कह रहे हैं रिपीट कर दो, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब रिपीट रहने दो, अब बस गाने को सुनाने का समय आ गया है, तो गाना एंजॉय करो। बजाती हूँ बस सबसे थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो दुबई चले जाइए, अब तो रेस्ट्रिक्शंस भी हट गए हैं और साउथ हॉल ट्रैवल की बड़ी अच्छी डील्स भी चल रही हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeah. Leica Radio.

एस आर डी बर्मन के म्यूजिक पर नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल से था ये गाना, जो था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर साथियों ने सही पहचाना और जिन्होंने सही नहीं पहचाना उन्होंने आमिर खान की स्टाइल में जरूर कहा होगा, ओ तेरी की, ये गाना तो हमें आता था। मैंने कहा था

0: ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, आप सब जानते हो इसको, लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं, हम ये गेम खेलते हैं जस्ट फॉर फन। तो जिनको पसंद है उनके नाम पर करती हूँ संध्या भाव सर, जासू जी एंड ऑफ कोर्स हमारे अयूब जी कहते हैं ये गाना तो सिर्फ मेरे नाम करना। अयूब जी, मैंने किसी के नाम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर, ठीक है? चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो लीजिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी, आइए जानते हैं उनसे। हाँ जी कमल जी, कहिए कैसे हैं और क्या है आज हमें बताने के लिए आपके पास?
3: बहुत कुछ है, आपने गाना लाया मंजिल का, तो मंजिल देखते हैं आज कौन चढ़ता है। तो वी हैव एन अमेजिंग अमेजिंग गेम टुडे, वी हैव द मोस्ट पावरफुल गेम एंड T20 वर्ल्ड कप, we've got this in the history, which is making history, breaking hearts, but breaking records. But today we've got the mighty England who are going to be really powerful, but they got the advantage of the, obviously, the supporters, the ground, but nevertheless the Australians are very, very powerful themselves. So they will be, you know, coming in numbers as well. So I think it's going to be a fantastic, fantastic final. Already there's a lot of supporters coming in from all ends, all gates. So the game starts at 3:30. Let us see who is going to get to that manzil and who's going to get their hands on this trophy, which is the most important, one of the most important trophies in the world. And it's going to be amazing final. And you know, Ritu, I'm going to take this opportunity and, you know, to thank our listeners for listening to me and my updates and, you know, being there with Leica Gold. And we will give you all the updates this afternoon from the ground, and we will give you and all the love from me, your host and those, Kamal Prabhakar. We'll catch up very soon.
0: Thank you, Kamal ji. मैं भी आपको thanks कहना चाहूंगी क्योंकि आपने इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो डिटेल्स हमें इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ साझा किए हैं, उसके लिए हम भी आपको बहुत बहुत thanks कहना चाहते हैं।
3: Thank you very much indeed, Rituji. It was my pleasure, and thank you to all the presenters and yourself as well. Giving the interviews were really good, brilliant interviews, and I look forward working with you again and see if we do some programs in the future. So have a lovely afternoon. What's left over? It's really sunny, and it's going to be. Keep your ears on the radio for all the updates and the game.
0: Thank you, Kamal ji. Thanks. Bye bye.
3: Thank you. Bye bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are LEICA Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So Gold Rate is 100.61 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
1: This is Laika Radio.
0: सही सुना आपने, ये है लाइका रेडियो नेटवर्क और अब समय है ऋतु शर्मा का आपसे बाय कहने का, क्योंकि अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार गोल पर अनुराग आपका साथ देंगे। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी हमारी फजीला जी और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगे नीरज। और आप अगर इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर आप इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। और अगर आप नॉन स्टॉप क्लासिक्स सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड ऑनलाइन। 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो 90s। और पंजाबी के गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। तो जो मर्जी सुनिए, जब सुनिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी फिर से मुलाकात। मजे के साथ पूरा वीक बिताइए। मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।
2: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
1: ये है
2: लाइका रेडियो।
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
5: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
7: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे, कॉल ऑन 0208 507 7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldplastic.com। हेरल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी, इको फ्रेंडली and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Hérold disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots. Learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07-533-065-549. LEMFI means quicker and safe way to send money.
11: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
10: LEMFI means £10 sign up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LAIKA.
11: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
12: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
1: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: This week's number one on the Leica Radio Chart Show. Tune in every Friday at 6 p.m. on Leica Radio, Greater London.

0: भाई बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गीत पसंद आए होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। गीतों से पहले ज़रा आपसे जान लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थी रखते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाए तो मुझे इशारा आपकी तरफ से चाहिए, जहां भी बैठे, जिस भी जरिए को आपने चुना है। उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज आप सब तक पहुंच रही है, तो मुझे जल्दी से आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी आंखें टेलीविजन पर हैं और कान इस तरफ हैं, या फिर पूरी तवज्जो के साथ रेडियो ही सुन रहे हैं। जो भी करते हैं आप साथ साथ काम वो करते रहिए, लेकिन कान जो हैं वो इस तरफ होने चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि आप इधर ही सुने। क्या कहती है सरिता? चलिए अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जरा ये मैसेज आप तक पहुंचा दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to कितने पैसे, जरा जान लें आप भी। आज मिलेंगे आपको 126 rupees and 75 paisa अगेंस्ट 1 British sterling pound। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio. Laika
3: Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: राइट भी बहुत एक्साइटिंग हो रहा है अब तो, एंड आज है मैच ब्राज़ील एंड नॉर्वे के बीच, रात 9 बजे शुरू होगा एंड दिस इज़ राउंड ऑफ 16 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ़ यू मैंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Laika Radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई गीतों में आप पहचान ही चुके हैं कि क्या कॉमन है. एक वर्ड है जो हर गीत में सुनने को मिल रहा है और इस गीत में दो आवाज़ें जो आपने सुनी वो थी लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आई मिलन की बेला, जो 1964 में आई थी. उस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को. जो मेरे साथी बराबर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस लिखकर बता रहे हैं कि यस सरिता, हमारे कान तुम्हारी तरफ ही हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. अगर आपको भी कोई ख़ास गाना याद आ रहा है इस वर्ड से, और ये वर्ड क्या है, सनम, वेरी इजी. हाँ, वो गीत मत कहिएगा जो मैं भी प्ले करना चाहती थी, लेकिन ये कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी. बेखुदी में सनम, ये गीत मैं नहीं प्ले कर पाऊँगी. इसके अलावा आप अगर पुराना कोई भी गीत आपको याद आ रहा है और आप चाहते हैं प्रोग्राम में शामिल हो तो मुझे बता सकते हैं. ज़्यादातर गाने 90s के हैं जिसमें सनम वर्ड आता है. पुराने गीतों में सनम इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सरिता के पास लिस्ट है. ये नहीं कि मैं स्टक हो गई हूँ, मैं वैसे ही आपसे कह रही हूँ, अगर आपको बताना है तो बताइए, अपनी पसंद मुझ तक पहुँचाइए.
0: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Tune से आप पहचान गए होंगे, शंकर जयकिशन की धुन है. लता मंगेशकर एंड मुकेश जी की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म संगम.

0: और जिसने भी इस गीत की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई थी, जरा स्माइल करते मुझे पता चल जाएगा कि आपने सुन लिया है। और अगर आज आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह है या कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक है हम आपकी खुशियों में। यू आर शेयरिंग योर बर्थडे टुडे विद जावेद अली, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने लेट 2000 से ही गाना शुरू किया, इसलिए मैं उनका कोई गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी। एंड जाहिद खान इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह या कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. किस किस करेंसी में कितने कितने पैसे तो जान लीजिएगा। इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 127 रुपीस एंड 46 पैसे। पाकिस्तानी रुपीस 371.49, श्रीलंकन रुपी 447.62, बांग्लादेशी टका 164.2, अफगान अफगानी 86.2 एंड US डॉलर्स 1.33।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers.

0: gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Rahm Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
1: भी मेरे बहुत से साथियों ने इस गाने की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई है फ्रॉम द फिल्म पत्थर के सनम. आप भी जरा अपने आप ही ताली बजा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा आपकी पसंद पूरा कर रही है सरिता इस वक्त. फ्रॉम द फिल्म पत्थर के सनम एंड दिस इज द टाइटल ट्रैक.

0: मनोज कुमार एंड वहीदा रहमान इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे एंड साथ में थी प्राण एंड मुमताज इज वेल. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत सुना और उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इंजॉय भी किया होगा. एंड जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस लिखते जा रहे हैं उन सब के मैं एक बार इनाम ज़रूर लेना चाहूँगी. मिसेस शेख थैंक यू, वत्सला जी, संध्या बाप्स, मोहम्मद साहब आपका भी, हरप्रीत आप, हाजीत आप सुन रही हैं अमेरिका में हमारा प्रोग्राम, कनाडा में, एंड भारती जी, तोची जी, रोशनी जी, काशिफ, जैस्मिन, सलमा मेडस्टोन कैंट में, एंड जगतार्स जी वैंकूवर में, विजय गनोवा जी आपने भी कहा था एक गाना मेरे नाम कर दीजिएगा, सहर, हना, अर्जुन जी, संतोष जी, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, प्रीति शाह, इरम, इंतशाब, निर्मला जी, अमिता जी, रानी ऑफ स्लॉ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और जो मेरे इस प्रोग्राम को साइलेंटली इंजॉय कर रहे हैं उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी, इसी तरह से मेरा साथ देते रहें. एक और गीत की फरमाइश अभी अभी मुझ तक पहुँची है एंड वत्सला जी ने उस गीत की फरमाइश की. सॉरी, अब समय के अभाव के कारण मैं इस आवर में गीत शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी पसंद को ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगी. तो इसी तरह से साथ देते रहिएगा. आज अगर आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह है, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी. एंड आप शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे जावेद अली के साथ एंड जायद खान के साथ. और भी कई खुशी के मौके होते हैं और अगर आपकी आंखें जमी हुई हैं टेलीविजन पर तो देखते रहिएगा.
1: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 1.99, फाल्कन रेड लेंटल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी,
2: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
1: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
3: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
4: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
3: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
4: Or sales at leicamedia.co.uk.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
7: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
6: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
7: दिल तो टूट पे गया,
6: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
8: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
6: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
9: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
10: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
11: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
12: This is Leica.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और फिल्म फतेह का गीत एक अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ. मुझे उम्मीद है, इनफैक्ट मेरी जो हिस्ट्री है ये बता रही है कि 2021 के बाद ये गाना आज प्ले हुआ है इस स्टेशन से. फतेह था फिल्म का नाम एंड ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी, इसलिए मैंने इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी. फतेह जिसमें काम किया था संजय दत्त ने, साथ में थी सोनम. डू यू रिमेम्बर सोनम? सोनम यस. 90s में इन्होंने कुछ एक फिल्मों में काम किया. तलत जानी ने इसे डायरेक्ट किया था और फिल्म का संगीत तैयार किया था नरेश शर्मा जी ने. इस गीत में मुझे एक आवाज़ फॉर श्योर लग रही थी मंगल सिंह जी की है, लेकिन क्रेडिट्स में लिखा नहीं है. शबीर कुमार, सुखविंदर सिंह, नीलेश कुमार एंड कोरस. तो एक आवाज़ मेरे ख्याल में मंगल जी की भी थी. अगर मंगल जी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि यस ही वाज इन दिस सॉन्ग और नॉट. और इस प्रोग्राम का सेकंड आवर का पहला गाना जो था वो मैंने फिल्म नरसिम्हा से चुना था, वो भी आज ही के दिन यानी 5th of July को 91 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें सनी देओल एंड उर्मिला मातोंडकर ने काम किया था. एन चंद्रा ने बनाया था इस फिल्म को और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था. क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी हुई हैं? अगर देखी थी तो आपको कैसी लगी थी? नरसिम्हा वॉज गुड फिल्म एंड सनी देओल का काम भी बहुत खूबसूरत था. इसमें एक और भी थे एक्टर, नरसिम्हा में और कौन से एक्टर थे, फॉरगेटिंग हिज नेम. वो इतना विवेक मिश्रा, वॉज इट विवेक मिश्रा और अतुल अग्निहोत्री, इन दोनों में से एक थे. एनीवे तो मैंने ये फिल्म देखी हुई है पर याद नहीं आ रहा है. भुलक्कड़ है ना सरिता, हमेशा कहती है सरिता भुलक्कड़ हूँ. तो याद की अगर आपको याद है तो मुझे बताइए आपने ये फिल्म यहाँ लंदन में यूके में देखी थी या कहीं अपने देश में देखी थी. तो दोनों गीत आपकी पसंद पर खरे उतरे होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ. इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, जैसे कि भरत गंगाराम जी ने, जयंत जी ने एंड सुरभि आपने अभी अभी ज्वाइन किया, इरम आपने भी, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत. एंड जहाँ भी हैं आप, जो भी कर रहे हैं, अगर आंखें टिकी हुई हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो देखते रहिए ना. मैं कब मना करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कान इस तरफ होने चाहिए तो इन कानों में रस घोलती रहेगी सरिता, ऐसी मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ. और मुझे उम्मीद है ये पैरोडी सॉन्ग भी आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा. एक और फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, उसका गीत भी मैंने क्यू किया हुआ है और वो फिल्म है आ पाए बाहर आए, 1971 में आई थी ये फिल्म. इस फिल्म के दो गीतों में से फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको पसंद आएगा ज़्यादा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता ये वाला या फिर टाइटल ट्रैक आ पाए बाहर आए. कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं जल्दी से मुझे बता दीजिएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 126 rupees and 75 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: आज मैच है ब्राज़ील एंड नॉर्वे के बीच, रात को 9 बजे शुरू होगा एंड टुमारो ही हो जाएगा या आज मिडनाइट कह दे 1 o'clock आप मैच देख पाएंगे मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: राइट, जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है. मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता फ्रॉम द फिल्म आप आए बाहर आए और इसी फिल्म का दूसरा गीत है टाइटल ट्रैक आप आए बाहर आए. कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है?
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlatt Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click Rifko Theatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
6: Radio partner Leica Radio.
7: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
8: LemFi means quicker and safe way to send money.
9: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
8: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
9: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
10: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
11: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London, and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a tune, what a tune. बहुत प्यारी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने और इस गीत को अपनी कलम से लिखा आनंद बख्शी साहब ने. क्या बात है. और इस गीत को पिक्चराइज किस पे किया गया था याद है आपको. फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार, हीरोइन थी साधना और इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था. एंड फिल्म के निर्देशक थे मोहन कुमार. बहुत प्यारी फिल्म थी. अगर आपने नहीं देखी, जब कभी भी मौका मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा. बहुत प्यारा संगीत है इस फिल्म का. एंड गाने जब अच्छे लगते हैं, गाने पॉपुलर हो जाते हैं तो फिल्म अपने आप ही पॉपुलर बन जाती है, हो जाती है. बहुत से नए नए साथी भी जुड़ रहे हैं. अमिता जी आपने भी बड़ा प्यारा मैसेज लिखकर भेजा, रानी ऑफ स्लाओ, थैंक यू. आपका भी वजाहत, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. मिस शेख कहती हैं थैंक यू सो मच, मेरा दिन बना दिया, इतना प्यारा गीत था. तो ऐसे ही गीत जो मेरे दिल को भी भाते हैं वो मैं गीत प्रोग्राम में शामिल करती हूँ. एंड कभी कभी आपकी पसंद को भी मैं ध्यान में रख लेती हूँ और आपकी पसंद के गीत भी प्रोग्राम में पेश करने की कोशिश करती रहती हूँ. बता दूं कि ये गीत आप तक किसने पहुँचाया.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट. एक बात और कहना चाह रही थी मैं कि जब ये मैं सारा सर्च करती हूँ कि कौन सी फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, तो इट्स नॉट दैट ईजी. जो 80s के बाद की फिल्में हैं उनकी तो डेट मिल जाती है कि रिलीज डेट इज़ दिस, लेकिन जो उससे पहले की फिल्में हैं 60s और 70s की फिल्में हैं उनमें सिर्फ 67 लिखा होता है, 69 लिखा होता है, 60 जो भी जिस साल में रिलीज़ हुई. और अगर बहुत दफ़ा सर्च करो तो आ जाता है 1st of January. जिनका उन्हें पता नहीं चलता वो सभी फिल्में 1st of January 67, 66, 68 ऐसे लिखा होता है. तो बहुत मुश्किल से पता लगाती हूँ मैं कि ये फिल्म कब और किस दिन रिलीज़ हुई थी. अगर आपको भी याद हो कि कभी कॉलेज के ज़माने में आपने ये फिल्म देखी थी, हाँ कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था, अगर आपको भी कुछ पता चले तो मुझे हेल्प कर सकते हैं आप. मैंने मना नहीं किया कि आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे. राइट. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कमल जी अवेलेबल हैं या. कमल जी अभी लाइका रेडियो पर, लेट मी जस्ट स्पीक थ्रू कि यस आई थिंक ही इज फिनिश्ड विद द लाइका रेडियो. सो मैं जल्दी से उन्हें फ़ोन करती हूँ और देखें कि वो हमारे लिए अवेलेबल हैं. हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है क्रिकेट के मैदान में. ऑस्ट्रेलिया ने तो बना लिए हैं सारे रन, अब बताते हैं कि इंडिया ने खेलना शुरू किया या नहीं किया है अभी. तो लेट्स सी कमल जी आते हैं लाइन पर या अभी. यस इट्स रिंगिंग, इट्स रिंगिंग. हेलो कमल जी, गुड आफ्टरनून. यस, क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में. यह ऑस्ट्रेलिया तो खेल चुकी है, इंग्लैंड खेल चुकी है और अभी मैदान में आए हैं ऑस्ट्रेलिया विमेन. सो इंग्लैंड के रन.
3: हाँ जी सरिता जी.
0: हाँ जी, कैसे बताइए क्या हो रहा है.
3: गुड ऑल गुड. आपका फोन आया तो इंग्लैंड का लक हो गया. इंग्लैंड ने विकेट ले ली अभी, फर्स्ट विकेट, और मैच बहुत अच्छा जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ गुड गुड फिनिश एट द मोमेंट. यू नो ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड देन दे इलेक्टेड टू फील्ड पुट इंग्लैंड इन. इंग्लैंड को अंडर प्रेशर डाला तो इंग्लैंड एंडेड अप ऑन 150. And now Australia chasing. They need 151 to win. Lost their first wicket, so they really need to bowl well, field well, if they need to restrict Australia. So Srita ji, everything to play for, full house there. Either
0: I know. Only I'm missing, hai na? Only I'm not there. सभी वहीं पर हैं.
3: You're not there.
0: I'm not there.
3: Nah, but it's quite a good day and it's going to be finishing very well, Srita ji. But yeah. What amazing cricket has been played. Lot of skill, lot of high profile, you know. Bahut acha. Aur weather has given us brilliant time, honestly.
0: Yes, yes. So 17 for 1 ho gaye hain Australia ke. And they need 134 runs in 109 balls. Am I right?
3: 139, haan ji.
0: Yeah.
3: So 139 they need. And Sarita ji, I'm taking this advantage at the moment and taking that to say thank you to all our listeners for listening. Your host and those Kamal Prabhakar for all the updates and reports, and we look forward to giving you lots more in the future.
0: Thank you, my dear. Thank you so much.
3: Thank you.
0: Lovely Rita, talking
3: lovely
0: to you. Thank you. Aur ye the Kamal Prabhakar ji, and I always forget ki mujhe wo tag play karna hai pehle Kamal ji ko lene se pehle. To zara wo ho jaye.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. Women's Cricket Updates, presented by Kamal Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: चलिए भी कमल जी तो जा चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से स्कोर बता देती हूँ. इंग्लैंड वीमेन दे मेड 150 रन्स एंड ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मैदान में है. 1.6 ओवर्स में उन्होंने 21 रन्स बना लिए और एक खिलाड़ी आउट हो चुकी हैं. 130 रन्स दे नीड इन 108 बॉल्स.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full-week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply. LEICA
1: Radio. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LEICA Radio.

0: फिल्म का नाम था छलिया और ये छलिया आई थी 1973 में, जिसे मुकुल दत्त ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में काम किया था नवीन निश्चल ने, साथ में थी नंदा एंड शत्रुघ्न सिन्हा। आर डी बर्मन साहब का था संगीत। उम्मीद करती हूँ मेरा चुना गीत आपने पसंद किया। और जो मेरे साथी अभी अभी आए हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी। इंतशाब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली कॉमेंट्स। एंड विनी विनोद वरुण जी, थैंक यू। सभी ये लिख रहे हैं, एस एस बोगल जी, आपने मुझे पहली दफ़ा शायद मैसेज लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से रितेश, आप भी सुनते रहिएगा। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भरत गंगाराम जी अभी अभी आए हैं, थैंक यू। जयंत एंड मीना जी, बहुत लंबी लिस्ट है, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट आवर में कुछ अलग से गाने होंगे, यस, सुनते रहिए। कुछ ऐसे गीत जो पियानो पर प्ले हुए थे, कौन कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जल्दी बताइए।
1: This is Leica Radio.
2: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
3: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रही शमशाद बेगम जी. शमशाद बेगम जी का साथ दिया इस गीत में जगजीत कौर जी ने, एंड फिल्म का नाम था हीर राजा, मदन मोहन का था संगीत. और उम्मीद करती हूँ कैफी आजमी साहब का लिखा ये गीत भी आपको पसंद आया. हीर राजा 1970 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में काम किया था राजकुमार एंड प्रिया राजवंश ने. चेतन आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया.
1: L-Y-C-A. This is Leica. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोर कुमार और बहुत सी दूसरी आवाजें आपने सुनी। तीन देवियां से चुना था मैंने इस गीत को। देवानंद वॉज प्लेइंग पियानो एंड सिमी ग्रेवाल के लिए ये गीत गा रहे थे। और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio. Laika
0: एक बार फिर से सरिता डिसाइड नहीं कर पा रही है किस गीत को छोड़ दे, कौन सा गीत प्ले करे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर और आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है जल्दी से बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मीनवाइल आई एम गोइंग टू प्ले यू अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किशोरदा।
1: Laika Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: Here we go. From the film Kati Patang, Rajesh Khanna par play hua tha ye geet.

0: आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच. इतने प्यार से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और हर गीत के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है आपकी तरफ से, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एफर्ट्स, मेरा मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो आपको पसंद आती है. राजीव पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. भारतीय, अमिता जी, अंजान जी, रानी जी, रोहित डेंगूडरा डेंगूत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. विमल रायन जी, वत्सला जी, संध्या भावसर, रितेश जी, रानी इंसा, स्लाव, इंतशाब, बहुत लंबी लिस्ट है. दिनेश पोपट जी, थैंक यू ever so much. इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. At all protected.

0: latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: राइट, अभी तक ज्यादा वोट्स मिले हैं आपके हसीन रुख पे. आज नया नूर है उस गीत को और कुछ एक ने कहा है दिल के झरोखे में. सो कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद है जल्दी से बता दें.
2: ये है लाइक रेडियो.

0: एंड ओपी नैयर का था संगीत. फिल्म का नाम था बाहरें फिर भी आएंगी. गुरुदत्त जी ने बनाई थी ये फिल्म और इस फिल्म का संगीत इसमें काम किया था धर्मेंद्र माला सिन्हा एंड तनुजा ने. पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, हो सकता है आपको मालूम हो कि एस टी बर्मन साहब स्टार्टेड आउट एज द कंपोजर ऑफ दिस फिल्म. गाने उन्होंने बनाने थे बट ही सफर्ड अ हार्ट अटैक ड्यू टू विच गुरुदत्त रिप्लेस्ड हिम विद ओपी नैयर. वन ऑफ द सॉन्ग्स विच बर्मन दा रिकॉर्डेड इन मोहम्मद रफीज वॉयस वॉज कैप्ट बाय बर्मन. एस टी बर्मन साहब ने रख लिया था आफ्टर हिज रिकवरी एंड इट वॉज नॉट यूज इन दिस फिल्म. सम ईयर्स लेटर बर्मन दा रिकॉर्डेड द सॉन्ग एज ये दिल न होता बेचारा. ज्वेल थीव का गाना जो 1967 में आई थी इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 127.29, Pakistani rupees 371.38, Sri Lankan rupee 447.53, Bangladeshi taka 164, Afghanis 86.20 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: गोल्ड का रेट है 100 pounds and 61 pence का एक ग्राम सोना.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
2: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स टू, और आप भी मुझे लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. अब पता नहीं कौन आ रहा है आपके दरवाजे पर, देखिए जरा नॉक हुई है तो खोल कर देख लें कौन आया है, या फिर दिल के दरवाजे को खोलिए और बताइए मुझे कि कौन है आपके दिल के दरवाजे के बाहर. वैसे स्टूडियो के बाहर खड़े हैं सैंडी शाह, जो कि बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर आएंगे. एक गाना और है जो पियानो पर ही प्ले हुआ था और महेंद्र कपूर साहब ने गाया, वो गीत आज के प्रोग्राम का लास्ट गीत होगा. मुझे इजाजत देंगे आप और अगले हफ्ते मिलने का वादा, अगर जिंदगी ने साथ दिया. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते रहें और जिंदगी के हर पल को जिए, इंजॉय कीजिएगा. जब तक जान है तब तक इंजॉय कीजिए लाइफ को और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा. मेरी दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रही है मैसा और इधर आ रहे हैं सैंडी शाह, एंड मैनचेस्टर में आप सुन पाएंगे जेजी जे को. मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर वीक अहेड, बाय फॉर नाउ.
1: ये है लाइका रेडियो. इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
2: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
1: Big deals, big savings, while stocks last.
3: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
4: Radio partner Laika Radio.
5: South of travel 7 days a week. South of travel 24 hours a day. We're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
11: Punjab, the biggest tunes, none.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी Sarita Sabharwal with your weekend classics. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: इसमें तो कोई शक नहीं है, खुदा ने हर किसी के लिए कोई बनाया है, बस मिलने की देर है ना। एजेंट विनोद से दैट इज योर सॉन्ग, अरिजीत सिंह एंड जॉय बारुआ ऑन द वोकल्स, रावदा प्लेइंग आउट ऑन लाइका रेडियो।
1: लाइका रेडियो,
0: you're tuning into the Sunday Wrap with me, Messa, and yes, it is the time to kick off with our monthly feature, which is exciting Bollywood releases in this month of July 2025 2026. Yes, I'm not going back in time, no. So the month has already witnessed a dhamakedar start on the 3rd of July with the release of the groundbreaking female-led action entertainer Alpha. जी हाँ, अल्फा रिलीज हो गई है। फिल्म में हैं आलिया भट्ट और शर्वरी, दे आर एलीट अंडरकवर एजेंट्स एंड दे एम्बार्क ऑन अ मिशन पैक्ड विद हाई ऑक्टेन एक्शन एंड यू नो दे आर आफ्टर दिस रूथलेस विलन जिसे बॉबी देओल ने प्ले किया है। सो दिस मूवी इट्स गॉट सम स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज बज और यू नो काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं टू सी दिस यू नो फीमेल एक्शन ड्रामा। तो इस फिल्म को काफी डिसेंट स्टार्ट तो मिल चुका है, बट यू नो द रियल टेस्ट इज डेफिनेटली ओवर द वीकेंड, वंस यू नो इट पासेस देन इट यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्ड ऑफ माउथ, लोग क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा एक और मूवी जो 3rd जुलाई को रिलीज हुई है वो है बेबी डू डाई डू। आई नो इट्स क्वाइट अ स्ट्रेंज यू नो साउंडिंग टाइटल, बट दिस मूवी इज यू नो इट्स बीइंग टूटेड एज इंडियाज फर्स्ट देसी हिट वुमन crime comedy thriller जिसमें एक deaf and mute serial killer है and she commits crimes for mysterious reasons. That's interesting, I must say. Film में है हुमा कुरैशी और सिकंदर खेर in lead roles. So let's see how this movie performs against Alpha as its competitor at the box office. Have you watched any of these? Do let me know your thoughts. और भी सारी interesting releases होने वाली हैं इस month में, उसके बारे में भी बताऊंगी। Stay tuned to Laika.
1: Join the dots with Messa.
2: Laika Radio.
0: लेकिन आगे बढ़ने से पहले, yes, it is time now to kick off with our weekly fun game. In the first and second hour of the show, मैं आपके साथ खेलती हूँ एक fun game जिसका नाम है Join the Dots. And in the last hour, there is another fun game called Catch Me If You Can. And that is happening from 9 PM to 10 PM. अभी के लिए, let me tell you a little bit about this game. तो इसमें होता ये है that I give out 3 clues about a Bollywood film और आपको इन clues को join करके फिल्म का नाम बताना होता है। बट डोंट वेट फॉर द सेकेंड यू नो और द थर्ड क्लू टू कम अप, बिकॉज आप जैसे ही इस मूवी को गेस कर ले आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। सो द फर्स्ट क्लू फॉर टुडे इज कि आज की मूवी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका सीक्वल भी आया था 2015 में। सो दिस मूवी रिलीज इन 2011 और इसका एक सीक्वल आया था 2015 में। आई पर्सनली लव दिस मूवी एंड इट डिड प्रीटी वेल एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल। फिल्म की लीड हीरोइन वो हैं हु इज नॉट जस्ट अ पॉपुलर एक्टर बट ऑल्सो अ फिल्म प्रोड्यूसर and an Indian politician as well. And the hero is someone who has worked in Tamil as well as Hindi cinema. और अभी कुछ दिन पहले उन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। That is your first clue for this movie. 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसकी लीड हीरोइन एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर और इंडियन पॉलिटिशियन भी है। And the hero is someone who has worked in Tamil and Hindi cinema. और अभी कुछ दिन पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। कैन यू सेंड इन योर गेसेस? यस, यू कैन सेंड देम इन ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर।
1: व्हाट्सएप लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स नाउ ऑन 07404-793-719। Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Lata Mangeshkar ji and Kishore Kumar sahab on the vocals of that, a beautiful romantic classic from the film Bade Dilwala.
1: This is Leica Radio across the Midlands. Leica Radio.
0: So coming back to our monthly feature of exciting Bollywood releases in this month of July, it's great news for all the fans of the Dhamaal series. 10 July ko release ho rahi hai Dhamaal 4 with the original Goofy gang returning to the big screen for one of the biggest treasure hunts of their lives. फिल्म में हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी अमंग्स अ फैंटास्टिक एंसेंबल कास्ट और साथ साथ हिलेरियस मिस एडवेंचर्स होंगे, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स और सही मायनों में बोलूं तो बहुत सारा धमाल होने की चांसेस हैं इस मूवी में. सो दैट इज वन फिल्म आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर. इसके अलावा ऑन अ मोर सीरियस नोट, वी हैव द इंडिया स्टोरी जो एक पॉलिटिकल थ्रिलर है विद स्टार्स श्रेयस तालपड़े, काजल अग्रवाल एंड मुरली शर्मा, विच इज रिलीजिंग ऑन द 24th ऑफ जुलाई. ये मूवी जो है इट एक्सप्लोर्स यू नो द वेरियस इट एक्सप्लोर्स corporate corruption scandals and it is you know how it affects and what kind of far-reaching consequences these kind of scandals can have. So that one definitely will be quite intense and interesting to watch as well. I think some more releases that I'll be speaking about that's coming up, so stay tuned to Leica Radio.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: So, holiday break, so जी हाँ, Southall Travel का तो नाम ध्यान में आ ही जाता है ना. So, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. So, Dubai is calling you. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. Remember, all travel is atoll protected.

0: 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मैंने कहा. एंड इस फिल्म में जो है जो हीरोइन है, शी इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ प्रोड्यूसर एंड रिसेंटली इंडियन पॉलिटिशियन भी बनी है. एंड द हीरो ऑफ दिस फिल्म इज समवन हु वर्क्स इन तमिल एंड हिंदी सिनेमा, एंड पिछले दिनों उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था. सेंड इन योर आंसर्स टू दिस व्हाट्सएप नंबर.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Let's take a look at your gold rate now. Gold is currently trading at 100.61 pounds per gram.
1: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Another huge giveaway is coming. Like a radio network.

0: भूत पुलिस से मुझे प्यार प्यार है, जस्ट फॉर यू अशोक परमार साहब लिसनिंग इन फ्रॉम इंडिया. इट्स अमेजिंग टू हैव यू यू नो ऑन द शो एट दिस टाइम. आई नो बहुत देर हो गई है इंडिया में. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और जन्नत मूवी से जरा सा दिल में दे जगह तो KK ऑन द वोकल्स. It's the last and final hour of the Sunday Wrap. Aap hai Mehsa ke saath on Leica Radio 1458 AM across Greater London, DAB Digital Radio across the Midlands, Alexa, Google Home, LeicaRadio.com और Leica Radio mobile app पर आप हमें सुनते हैं. And of course, अगर आपने अभी तक हमें follow नहीं किया है, then let me tell you, social media पर हम बहुत active हैं. और आप हमारे you know behind the scenes वगैरह में you know अगर शामिल होना चाहते हैं, then it is Leica Radio on Facebook. And at Leica Radio 1458 on Instagram and Twitter, जिसपे आप हमें follow कर सकते हैं. And of course, हमारा जो Leica Radio mobile app है, आप जानते हैं, that it just does not feature Leica Radio London, but it features Leica Radio Greater Manchester, Leica Radio Midlands, Leica Gold, जो London का number one Asian retro music station है, वो भी आपको हमारे app पे मिलेगा. और साथ साथ हमने अभी you know साल की शुरुआत में तीन बड़े ही धमाकेदार स्टेशंस भी लॉन्च किए हैं ऑन आवर मोबाइल ऐप. वी हैव गॉट यूकेज फर्स्ट 90s बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन लाइक अ रेडियो 90s फीचर्ड देयर, एंड आवर फर्स्ट एवर पंजाबी म्यूजिक स्टेशन लाइक अ रेडियो पंजाबी, एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड क्लासिक्स को अगर नॉनस्टॉप सुनना चाहते हैं, देन यू हैव लाइक अ गोल्ड 2 प्लेइंग एज वेल एज अ चॉइस ऑन आवर लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप. सो यस, गेट कनेक्टेड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू अस, क्योंकि आपका प्यार ही हमें जिंदा रखता है. एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं. इस शो के इस वाले आवर में लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक इंक्लूडिंग द लाइक अ चार्ट टॉपर, द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर, अनदर ब्यूटीफुल इंडी पॉप हिट विच विल बी अ गजल, एंड ऑफ कोर्स हमारी फन गेम कैच मी इफ यू कैन.
1: कैच मी इफ यू कैन विद मेसा
2: लाइक अ रेडियो.
0: Catch me if you can is another fun game जो मैं आपके साथ खेलती हूँ मेरे शो में. एंड इसमें जैसे कि मैंने जॉइन द डॉट्स में आपकी जो बॉलीवुड फिल्मों की नॉलेज इन जनरल चेक की, इस गेम में आई चैलेंज यू टू यू नो आई चेक योर बॉलीवुड लिरिकल नॉलेज, कि आप अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके वर्ड्स वगैरह कितनी अच्छी तरह से जानते हैं. एंड आई एम गोना रीड आउट थ्री सॉन्ग लाइन्स नाउ, और किसी एक गाने में मैंने की है वर्ड्स की गड़बड़, कोई एक गलत सा वर्ड मैंने यू नो डाल दिया है जो एक्चुअल लिरिक्स नहीं है गाने के. आपको बस इसे पहचानना है और अपना सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजना है. ऑलराइट, आर यू रेडी? सो हियर आई गो. पहला गाना है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा फ्रॉम कभी खुशी कभी गम. दूसरा गाना है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है फ्रॉम बरसात. और तीसरा गाना है आंखों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये दीवाना तड़पने लगा फ्रॉम गुलाम. अब किसी एक गाने में हुई है गड़बड़, बताइए किस गाने में. आई एम गोना रिपीट इट. पहला गाना सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा. दूसरा गाना है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है. और तीसरा गाना आंखों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये दीवाना तड़पने लगा. बताइए किस गाने में हुई है गड़बड़ ऑन दिस नंबर.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
2: Leica Radio.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So taking a quick look at your SBI YONO rate now, so for £1 in British sterling today, you can get up to 126.75 Indian rupees. Remember, you can make your transfers via branch, online or by using the YONO SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: So yes, your football match updates now. Brazil and Norway are playing at the New York, New Jersey Stadium at the moment. And match ke 18 minutes ho gaye hain, lekin abhi tak dono ne koi, you know, dono mein se kisi ne goal nahi kiya hai. So it's a nil there. And the big match, yes, of course, coming up, Mexico against England. That's going to be on the 6th of July. That's tomorrow. But it is in a way tonight, kyunki 1 baje subah ye match hone wali hai. And then tomorrow, another big match coming up, Spain taking on Portugal. So yeah, all these match updates are brought to you on Laika Radio by Rack Law Solicitors. Don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com, or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. Your Sunday evenings with Mesa, proudly sponsored by ticketstoindia.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
3: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
3: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV115BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Miss your favourite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want. Laika Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Laika Group, home of Laika Radio and Laika Gold.
2: Laika Radio.
6: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
7: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
1: Laika Radio Network. broadcasting across the UK with Asian stations. This week's number one on the Leica Radio Chart Show. Tune in every Friday at 6 p.m. on Leica Radio, Greater London.

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.

0: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
1: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
0: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
1: दिल तो टूट भी गया,
0: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
2: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
0: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
3: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Raj Patton. Hey up, it's me, Raj Patton. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7pm with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and of course the Punjabi hits. That's me, Raj Patton, on Drive.
5: Like a radio. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Like a Radio.

0: Leica Radio.
1: Time for another Leica Love Classic.
2: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: Mocha Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
2: The madness is back. Dhamal 4.
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
2: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
4: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
2: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
5: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल. Or protected.
8: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is Leica Radio.